समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा

0: प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
1: Hey my friends, Ricky Ramlagan here, inviting you to join me on the musical journey to the Midnight Hour, every Tuesday to Friday from 4 to midnight. Your Sundar Sapna on Radio Jagriti, 102.7 FM, where I bring you the passion of beautiful, breathtaking, specially selected music and the warmth of great company. The music you know, the music you love, the music you want to listen to on your Sundar Sapna. Your enchanted journey to beautiful dreams.

0: प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय
1: Bhakti is devotional worship directed to the supreme deity. Arpan means an offering. Join us on Radio Jagruti 102.7 FM Friday mornings 6 to 7 AM for the program Bhakti Arpan with yours and Dharma Pandit Navin Umadat Maharaj. Jai Sitaram.

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम, आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 to 6 PM वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन अवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचं चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणि रंजितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

सत्संग प्रेमी भक्तजनों, ये बात उस समय की है जब एक घर से पिया मिलन को डोली उठती है, तो उसी पल किसी दूसरे घर से पिया से जुदा होकर अर्थी उठती है। उन दोनों की मुलाकात एक चौराहे पर होती है। डोली ने अर्थी को देखा और अर्थी ने डोली को देखा। डोली ने अर्थी से कहा कि बहना, ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तो शुभ कार्य करने जा रही थी, तूने मेरे रास्ते में आकर मेरे शुभ कार्य को अशुभ कार्य में बदल दिया। इतना सुनते ही अर्थी कहने लगी कि बहना, ऐसे बड़े बोल मत बोल, शायद तुझे पता नहीं जहां मैं आज जा रही हूं कल तुझे भी वहीं आना है। ये तू जान ले, अगर तू बड़ी समझती है अपने आप को तो सुन, मैं वैसी हूँ

कंधों ने सहारा मुझे भी। जो फूल तेरी डोली पर चढ़े हैं वही फूल मेरी अर्थी पर भी। अगर उन फूलों ने अंतर नहीं समझा

देश की आजादी के साथ धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर रह गए। बदनसीब इंसानों का ये काफिला उस भयानक रास्ते पर छोड़ दिया गया जहां जिंदगी रो रही थी और मौत हंस रही थी। ये कहानी उन करोड़ों में से एक नौजवान की है। उसके बूढ़े माँ बाप उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिए।

और वो हजार मुश्किलों से अपनी छोटी बहन और नन्हे भाई को लेकर इस आंधी से निकला। इंसान की इस हैवानियत को देखकर उसका दिमाग चकरा गया, उसका विश्वास हिल गया। भगवान की दुनिया में ऐसा क्यों, ऐसा क्यों।

धर्मी माँ की आके कुले जग देख बाप की कांध चढ़ा की कोर मीमा की आंखें खुले जग देख बाप की।

भर देख, इन दोनों की सेवा से भर देख, ले लो ले लो दुआए माँ बाप के हो, ले लो दुआए माँ बाप के, सर पे उठ

सेवा बढ़ के ना होगी खोई, इन दोनों के सेवा से बढ़ के नो सर्विस ऑन दिस अर्थ इज ग्रेटर देन द सर्विस रेंडर्ड टू देम बोथ. Service you render to your parents, there can be no service greater than that. And what gives you the most blessings? Or rather, who in this life can give you the most blessings? Your parents and of course your ancestors. Listen.

प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय सीताराम आई एम पंडित शिवानंद राधे महाराज आस्किंग यू द व्यूअर्स एंड द लिसनर्स ऑफ रेडियो एंड टीवी जागृति टू जॉइन अस एवरी वेंसडे फ्रॉम 5 टू 6 पीएम वेयर वी स्पीक अबाउट द ग्लोरीज ऑफ श्री कृष्ण भगवान ऑन आवर प्रोग्राम कृष्ण अर्पणम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय

0: your number one, the one and only Hindu radio station. A radio station that was born out of a struggle, and it was built especially for you. A radio station that you can call your very own. Radio Jagati, 102.7 FM.
1: देश की आजादी के साथ धर्म और ईमान के नाम पर जो खूनी आंधी उठी उसमें लाखों तो खत्म हुए और करोड़ों बेघर बेसहारा होकर रह गए बदनसीब इंसानों का यह काफिला उस भयानक रास्ते पर छोड़ दिया गया जहां जिंदगी रो रही थी और मौत हंस रही थी यह कहानी उन करोड़ों में से एक नौजवान की है उसके बूढ़े मां-बाप उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिए गए और वो हजार मुश्किलों से